हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

0: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Life is moving in fast mode. For hassle-free banking from the comfort of your home, switch to SBI Premier Banking,
2: where you get dedicated virtual relationship.

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10:00 आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11:00 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1:00 सुनिए सुरीला सफर। दोपहर 2:00 त्रिवेणी। सुनिए आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 आप सुनेंगे सखी सहेली। 4:00 पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर के शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है और शुभा जी आपका भी स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी।
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य रागों में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित जरूर मिलता है।
0: जी।
1: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरझी सुलझा जा रे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महाराग है, जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग जरूर सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे। मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण

0: मंदिर हैं, उनमें आप जानती हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी नहीं
1: होती नहीं
0: होती,
1: है।
0: राग सेवा
1: ये
0: अवश्य।
1: सनातन परंपरा है,
0: जी बिल्कुल
1: अष्टछाप कवियों ने
0: जी
1: इसका। जी
0: जी और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है। तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
1: जी।
0: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जैसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है। और मुझे याद है कि अभी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिनें
1: जी
0: सब जो है सज धज के और मेहंदी लगाती
1: हरी
0: हैं,
1: चूड़ियां
0: एक हरी
1: पहनती
0: चूड़ियां,
1: हैं।
0: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी श्रृंगार का सामान ये सब आता है। तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज
1: जी
0: के दौरान। तो ये बिल्कुल इसका जो साहित्य है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि तीज का पद क्यों कहा जाए इसे।
1: शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु, सावन और जो आप ये कह रही हैं त्योहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको
0: बिल्कुल
1: मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही है।
0: जी हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक उसका जी
1: सृजनशीलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है, और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे।
1: जी
0: तो इस पद में क्या कहा गया, जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए। तो वो कहती है, लट उरझी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे। तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की साड़ी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
1: वाह।
0: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार हैं, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो,
1: हाँ
0: भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
1: हा हा करत।
0: हाँ मतलब एक बुलाने का तरीका
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलूं,
1: हाँ
0: बीरी नैक खवाए जा बालम। बीरी यानी पान का बीड़ा, वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है।
1: जी
0: तो ये पद तीज का पद जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप इत्यादि के साथ बढ़त के साथ गाएं तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप
1: जी
0: में भी सुनने को मिलता है।
1: और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में इसे मनाया जाता है
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: त्योहार।
0: बिल्कुल मनाया जाता
1: तो
0: है
1: उस समय तो नायिका के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
0: बिल्कुल
1: क्या मन
0: एक बिल्कुल
1: है?
0: पूरा पद भी सुनाऊंगी, और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
1: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई हैं ये
0: जी
1: चीजें, बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त
0: जी
1: होगा।
0: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार है।

0: ये था तीज का पद, तीन अंतरे बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 28.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही 95% और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 5:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43। अब सुनिए एयर इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगा।

अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आज सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सुना जा सकता है गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत डॉक्टर विनीता शैजू के साथ ली गई भेंटवार्ता, विश्व स्तनपान सप्ताह। दोपहर 12:00 हम प्रसारित करेंगे तेलुगु में महिलाओं के लिए कार्यक्रम वनिता वाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनेगा डॉक्टर बिंदु राजेश के साथ की गई साक्षात्कार, मदर्स मिल्क अ गिफ्ट ऑफ लव। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

दोपहर 2:30 पर FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा में आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

0: ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। श्रोताओं, सवेरे के 7:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों से छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयुष शाखा की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। 7वें संस्करण में उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राज्य के स्वयंसेवक और युवा पेशेवर शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि 7वें संस्करण के लिए आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एनआईटी सहित 20 उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमन कार्यक्रम की मेजबानी और संचालन के लिए नोडल संस्थानों के रूप में चुना गया है। चयनित प्रतिभागी अपने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 से 7 दिवसीय शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं करेंगे। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति से संबंधित जोखिम, कच्चे तेल का मूल्य और वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का भी उल्लेख होगा, जिनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को SOP की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शिकायत निवारण और धन वसूली मॉड्यूल को शीघ्र

0: सख्ता से अपनाने और लागू करने का निर्देश दिया। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत नए और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं के तहत सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि द्वीप समूह के सभी अनुसूचित जनजाति छात्र बिना किसी आय सीमा के इस योजना के पात्र हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का आधार विवरण उनके वर्तमान बैंक खाते और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक और अपडेटेड होना चाहिए। सहायता के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों के अलावा जनजातीय कल्याण निदेशालय में एक समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने आम जनता से मानसून के मौसम के दौरान आवारा और सामुदायिक पशुओं की देखभाल और सुरक्षा करने की अपील की है। नागरिकों से जहां भी संभव हो पशुओं के लिए अस्थायी आश्रय और पीने का साफ पानी प्रदान करने तथा बीमार जानवर के बारे में तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्थान को सूचित करने का अनुरोध किया गया है। पालतू पशु मालिकों को भी अपने पालतू जानवरों को बाहर न घूमने देने की अपील की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ही सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी and full-time gynecology and obstetric specialist services are now available under one roof. Ab migraine, lakwa, mirgi, chakkar, nason ki bimariyan, yaaddasht ki samasyaen, EEG, EMG aur NCV jaisi unnat jaanchon ke saath-saath garbhavastha ki dekhbhal, baanchpan, infertility, PCOS, mahilaon ki sabhi samanya evam jatil samasyaon ka visheshajya upchar uplabdh hai. स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत आयुष शाखा की ओर से द्वीप समूह के विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और सामुदायिक स्थानों पर नियमित योग कक्षाओं का संचालन कर रहा है। इन नियमित योग सत्रों का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, शारीरिक फिटनेस में सुधार करना, तनाव कम करना और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये कक्षाएँ सभी के लिए खुली हैं। द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक या 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 8, 9 और 10 अगस्त को भी द्वीपों के 1 या 2 स्थानों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मछुआरों को 8 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में अतिथि सहायक प्रोफेसर तथा डिग्री कार्यक्रम के अंशकालिक प्रशिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए सीधे साक्षात्कार 12 अगस्त को आयोजित होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने को कहा गया है। अधिक जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम और द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश वाले डिग्री पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 7 अगस्त से शुरू होंगी। अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे संबंधित विभागों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मध्योत्तर अंडमान के एकीकृत पुनर्वास केंद्र की ओर से मायाबंदर में राज्य परिवहन सेवा के कर्मचारियों के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता और परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम, तनाव प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, स्वस्थ जीवन शैली प्रथाएँ, परामर्श सेवाएँ और पुनर्वास सुविधाओं की जानकारी दी गई। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत रंगत और कदमतला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 2 दिवसीय पहचान एवं चिकित्सा मूल्यांकन

नामांकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पात्र बच्चों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री किट प्रदान की गई। दोनों स्थानों पर कुल 55 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 11 बच्चों की आगे की मूल्यांकन के लिए संदिग्ध मामलों के रूप में पहचान की गई। उधर लिटिल अंडमान में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावकों सहित कुल 25 छात्रों ने भाग लिया। अंडमान कॉलेज में 8 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीकॉम जनरल, बीकॉम सीएस, बीबीए के लिए आज और बीए अर्थशास्त्र, बीए समाजशास्त्र और बीपीए संगीत के लिए परामर्श कल रखा गया है। अभ्यर्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह 9:30 बजे से उपस्थित होना होगा। इस दौरान ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा का अंक पत्र के साथ भरे हुए फॉर्म सुबह 10:30 बजे तक जमा करने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत युवा संगम के 7वें संस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों से छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयुष शाखा की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दिले नादान फिल्म से, सुधा मल्होत्रा की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: ने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाय हाय,
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम बाबा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आवारा फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

देश रागिनी मिडमीव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, एक सार्थक जीवन का मतलब केवल अमीर होना, लोकप्रिय होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना या हर चीज में परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन वो है जो वास्तविकता, विनम्रता, स्वयं को साझा करने की क्षमता और दूसरों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह के 14वीं तिथि तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह पर डॉक्टर विनीता शैजू के साथ ली गई भेंट वार्ता से।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके आने वाली पीढ़ी के ऊपर होता है, और एक आने वाली पीढ़ी अगर आज तंदुरुस्त रहेगी तभी वो आगे आने वाले समय में तंदुरुस्त रहेगी, और उसकी तंदुरुस्ती तभी शुरू हो जाती है जब उसका जन्म होता है। और जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले स्तनपान कराया जाता है। तो स्तनपान इतना ज़रूरी क्यों है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीता शाजू जी, जो कि एनिम्स के पीडियाट्रिक वार्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के

0: में कार्यरत हैं। तो आइए स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में उनसे कुछ सवाल किए जाएं। तो नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहले एक ही सवाल करना चाहूंगी कि एक नवजात शिशु को कौन कौन सी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो हमें देनी चाहिए।
1: तो एक नवजात शिशु को सबसे मुख्य और प्राथमिक जरूरत उसकी होती है माँ का स्तनपान। इसीलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसके बाद हम लोग सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि बच्चे को माँ का स्तनपान दिलाया जाए। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हुआ होता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि पैदा होने के आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ की छाती से लगा दिया जाए ताकि बच्चा स्तनपान ले सके। और अगर सपोज मदर को सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के 1 से 4 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का स्तनपान दिलाया जाए। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं बोलने से, जो स्तनपान होता है बच्चे के लिए अमृत समान है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो हमारे शिशु को एक हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। उसे कई तरह की बीमारियों से बचाए रखता है, उसे बहुत सारे एलर्जीज और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो जैसा ही एक न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है हम उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइस करते हैं और माँ के स्तन से लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में भी एक बॉन्डिंग शुरू हो जाता है और सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का वहीं से शुरुआत शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बच्चे के लिए ज़रूरत इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग में लगाना। तो बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है पहले बच्चे को क्लीन करके फिर माँ के पेट और छाती में बच्चे को लटा दिया जाता है ताकि माँ के साथ बेबी एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बना सके। उससे उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होता है और फिर माँ सक्सेसफुली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके साथ ही साथ जो है बेबी का न्यूबॉर्न केयर देना, फिर बेबी को जो है पैदा होते ही हम लोग बेबी को जो है टाइमली वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, टीकाकरण शुरू करवाते हैं जो बराबर समय अनुसार एज पर हम लोग का गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से बच्चे को उनका टीकाकरण मिलता है। तो विद द ब्रेस्ट फीडिंग जब प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होता है तो उनको कई बीमारियों से और जानलेवा बीमारियों से प्रोटेक्शन होता है। ये सारा इम्पॉर्टेंट केयर उनको मिलना चाहिए।
0: अब यहाँ पे हम स्तनपान की बात करते हैं, तो एक माँ को लगभग कितने समय तक अपने बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए?
1: जैसे ही मैंने कहा पैदा होते ही बच्चे को माँ के स्तन में लगा दिया जाता है, स्तनपान का हम लोग एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और हम एडवाइस करते हैं कि लगभग 2 साल तक माँ ज़रूर अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। ऐसा क्यों बोलने से, पहला 2 साल है जब मैक्सिमम बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है।
0: अच्छा।
1: और माँ के दूध में ऐसे कई तत्व हैं जो बच्चे का ब्रेन का विकास में मदद करता है, हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहला 2 साल तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है, उसमें जन्म से पहला 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध देना।
0: अच्छा।
1: ऊपर का कुछ भी पदार्थ नहीं देना, ना कि पानी तक भी देना, सिर्फ माँ का दूध देना। दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो पहला 6 महीना जो बच्चा का ग्रोथ होता है उसके लिए रिक्वायर्ड सारा न्यूट्रिएंट्स और सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माँ का दूध में ही अवेलेबल रहता है।
0: अच्छा।
1: तो माँ के दूध के अलावा बाहर से कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 6 महीना हो जाए अब तक बच्चा जो है थोड़ा पलटी खाना शुरू हो जाता है, थोड़ा उठ के बैठना शुरू हो जाता है, अभी वो एक्टिव हो जाना शुरू हो जाता है। अब से जाके उसका जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग 6 महीने के बाद में बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार देने को एडवाइस करते हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं।
0: अच्छा।
1: बट एज ए होल डेफिनेटली 2 साल तक जो है मदर ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये जो वक्त होता है तो उस समय माँ का जो खान पान है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिन्हें माँ को नहीं खाना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में ये एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर कोई पर्टिकुलर आइटम खा लेगी तो बच्चे को दूध अच्छे से मिलेगा नहीं है। अगर माँ कुछ ऐसा फलाना आइटम खा लेगी तो उसे माँ को भी गैस होगा, बच्चे को भी गैस होगा। ऐसा बहुत सारा मिसकंसेप्शंस है बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि ऐसा कोई भी फूड आइटम्स नहीं है जो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए मना है। क्योंकि मदर प्रेग्नेंट होने से पहले भी अपना नॉर्मल डाइट लेती थी,
0: बिल्कुल,
1: फिर मदर फुल प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डाइट ले रही थी, तो फिर अब लैक्टेशन के दौरान स्तनपान करने के दौरान क्यों वो चीज़ मना किया जाए? क्योंकि वो जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था जो भी वो खा रही थी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो उनके बॉडी से वो उनके गर्भपात्र में जो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं जिसके अंदर बच्चा पलता है ना, उसमें भी जाता है। तो बच्चा को तो माँ के कोख से ही सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्यों लैक्टेशन या स्तनपान

0: के दौरान वो फलाना आइटम बंद करे। इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करते हैं कि मदर को कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है। रादर माँ जब स्तनपान करती है तो उनको हेल्दी पौष्टिक आहार, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट उनको देना है, और ज़रूरत जो नॉर्मली वो खाती है उसे एक्स्ट्रा उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो एक नहीं वो दो जन के लिए ले रही है, अपने लिए भी और अपने थ्रू अपने ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए भी, तो उनको वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो घर के बने हुए फूड खाएँ, खूब सारी हरी सब्जियाँ खाएँ, बहुत सारे सीजनल फ्रूट जो अवेलेबल है लीजिए, और इसके साथ ही साथ अच्छे से पानी पीजिएगा, क्योंकि मदर जब अच्छे से पानी पिएगी, लगभग 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, जब मदर अच्छे से पानी पिएगी तो उनका बदन जो है अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा, उनका बदन में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो उससे जो है माँ के दूध में अच्छे से हाइड्रेशन रहेगा, बच्चे को अच्छा हाइड्रेशन मिलेगा। इसीलिए माँ को पानी भी अच्छे से पीना है, तो कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो स्ट्रिक्टली प्रेग्नेंट होने के बाद से हर प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली माँ को मना है, वो है अल्कोहल। कुछ भी हो जाए अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि वो माँ के दूध से बच्चे को जाए और काफ़ी नुकसान पहुँचाए, तो दैट इज़ ओनली थिंग जो माँ को एकदम मना है, नहीं तो सारा डाइट नॉर्मल डाइट वो सब कुछ ले सकती है, कोई रोक टोक नहीं है।
1: तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि माताओं को ब्रेस्ट फीड कराते समय इतना फीड नहीं आ रहा होता है, तो उस दौरान क्या कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए जैसे कि ब्रेस्ट फीड पड़ जाए?
0: एक्चुअली में ये भी जो है एक मिसकंसेप्शन है। अब ना जब माँ को ऐसा लगता है कि दूध हो नहीं रहा है काफ़ी, बच्चा भूखा है, बच्चा जब देखो रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है इसलिए नहीं कि वो भूखा है, बच्चा को रोने का और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा कारण, बच्चा जो है सोते सोते डायपर में सूसू कर दिया, अब वो डायपर गीला हो गया, सॉयल हो गया, अब बच्चा तो बोल नहीं सकता है, तो कर खाली क्या सकता है, रो सकता है, रो रो के वो अपना डिमांड को बताएगा। या फिर बच्चा जो है गर्म कमरे में, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को गर्म रखना चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो हम लोग कभी कभी ना बच्चे को ओवर रैप कर देते हैं। अब वे बच्चे कैसे बताएंगे कि मुझे गर्म लग रही है, तो ऑल दैट बच्चा करेगा रोएगा रोएगा रोएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों चुप नहीं हो रहा है, तो हम लोग जब उसके बाहर कमरे में लेके जाएंगे, थोड़ा खुला हवा में लेके जाएंगे, एकदम शांत हो जाता है। तो कारण क्या था, वो रो इसलिए नहीं रहा था कि उसे भूख लगी थी, वो रो रहा था क्योंकि उसे गर्म लग रही थी। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि हर बार रोता वाला बच्चा सिर्फ माँ के दूध के लिए नहीं रोता है, तो जब भी माँ को ऐसा लगे कि मुझे दूध कम आ रहा है, तो सबसे पहला चीज़ जो है अपने डॉक्टर या अपने लैक्टेशन काउंसलर या जो आशा वर्कर जो उनको देखती है, उनको कांटेक्ट करें, उनको अपना ये कंसर्न एक्सप्रेस करें कि मुझे लगता है कि शायद मेरा दूध कमती हो रहा है, तो फिर हम लोग असेस करते हैं कि एक्चुअली में कम हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग बच्चे में देखेंगे कि माँ को लग रहा है दूध कम हो रहा है, यानी बच्चे को दूध कम मिल रहा है, तो बच्चे में देखेंगे कि बच्चा दूध पीने के बाद कितने घंटे सोता है। अब ऐसा है कि अगर माँ को दूध कमती है तो बच्चा को दूध नहीं मिला तो भूखा पेट तो बच्चा सो नहीं सकता, है कि नहीं? तो लेकिन बच्चा अच्छे से दूध पीने के बाद 1.5-2 घंटा सो जाता है, बच्चा दूध पीने के बाद में बच्चा को अच्छे से पेशाब करता है, दिन में कम से कम 6-8 बार पेशाब करता है, बच्चा दिन में कम से कम 1-2 बार पॉटी कर लेता है, और बच्चा का जो वज़न बढ़ना होता है अच्छे से वज़न बढ़ रहा है। ये सब तभी मुमकिन है जब माँ का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम माँ से ये पूछते हैं ये सारे सवाल, तो इससे माँ को समझ में आता कि हाँ शायद दूध मिल रहा है। फिर भी जब उनका ये कंसर्न होता है कि दूध काफ़ी नहीं है, तो फिर हम लोग माँ और बच्चे को देखते हैं कि उनका फीडिंग टेक्निक सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, जब बच्चे को माँ स्तनपान कराती है तो बच्चा जो है सही तरीका से माँ का स्तन पकड़ नहीं पाता है, क्या करता है कि खाली निप्पल पे अपना मुंह रख देता है, वो निप्पल के चारों तरफ जो काला सा चमड़ा होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं, एक्चुअली में मैक्सिमम दूध जो है ना निप्पल के चारों तरफ वो जो एरियोला होता है उसमें बैठा रहता है। जो हम हमेशा फीडिंग में माँ को सिखाते वाले हैं कि बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग में लगाएं तो बच्चा का मुंह अच्छा से खुला हो और ये निप्पल के साथ साथ एरियोला वो भी मुँह के अंदर में जाए, ताकि बच्चा अच्छे से निप्पल और वो एरियोला को पकड़ के चूसे, तो जिसमें दूध बैठा है उसको वो चूसेगा तो निप्पल से दूध बाहर निकल के मुंह में आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि माँ खाली उसके सिर को पकड़ के अपने छाती को झुकाकर सिर्फ निप्पल रखती है, अब निप्पल में तो दूध नहीं बैठा है, तो जब वो चूसता भी है बच्चे को भी कुछ मिल नहीं पाता है, तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, टेक्निक गलत हो गया, माँ को सही टेक्निक मालूम नहीं था और इस कारण से बच्चे को दूध नहीं मिल रहा था। तो भी असेस कि अगर मदर का टेक्निक गलत है तो हम लोग बता के देते हैं और प्रॉपर टेक्निक एस्टेब्लिश करके मदर को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि देखिए ये है तरीका, जरूर दूध आ जाता है उसमें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि बच्चा देखो जब देखो रोता है बोल के ना पेरेंट्स या केयर गिवर क्या करते हैं, बच्चे के मुँह में ये पैसिफायर रख देते हैं, या फिर बच्चे को जो है माँ का दूध कमती है बोल के पानी पिला देते हैं या कुछ और शहद चटा देते हैं,

0: तो ये सब में क्या होता है ना कि बच्चा को जो चूसने का जो विगर होता है, जो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है, ऑलरेडी वो पानी पिला दिया है, प्यास उसका बुझ गया है, अब वो पानी लेने के बाद में वो क्यों दोबारा माँ की छाती में पकड़ेगा, है कि नहीं? वो तो छोड़ देगा, वो उसे माँ का दूध नहीं चाहिए, कुछ और चटा दे। सपोज करो आपने शहद चटा दिया, तो एक तो शहद में इतना मीठा होता है, जब शहद चटा दिया तो इतना मीठा का सामने वो माँ का दूध क्यों पकड़ेगा, वो माँ का दूध नहीं पकड़ेगा। इस तरह माँ का दूध के अलावा जब कुछ और उनके मुँह में रख देते हैं, इवन पैसिफायर भी रख देते हैं ना, तो क्या चूस चूस के अपना सारा एनर्जी वो पैसिफायर पे गवा देता है। तो जब फाइनली उसको माँ के छाती में रखना होता है तो उसके अंदर में उतनी हिम्मत और विगर होती नहीं है, तो वो थोड़े से देर के लिए लेके ना वो थक जाता है और वो सो जाता है, तो माँ को लगता है कि बच्चा दूध नहीं ले रहा है। तो ये सारा है फीडिंग इश्यूज, जो एक्चुअली में माँ को दूध कम हुआ बोल के नहीं है, इश्यूज है माँ का अंडरस्टैंडिंग में और सही तरीका का फीडिंग ना होगा। तो मेन है ये माँ को समझाना और माँ का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना कि आपका दूध कभी कमती नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तरीके में गलती है, उसको हम लोग सुधारेंगे तो जरूर वापस से आपका दूध अपने बच्चे के लिए काफी हो जाएगा। अवेयरनेस, सही ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक एंड सही तरीके से कैसे कराना माँ को भी और माँ के साथ में उनका सारे केयर गिवर्स को भी, तब जाके वो सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है।
1: डॉक्टर, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है?
0: जरूर। तो अब प्री मैच्योर ना, हमारे डेफिनेशन में प्री मैच्योर तो कोई भी लेवल तक जा सकता है
1: जी।
0: तो नॉर्मली अगर कोई भी बच्चा अगर 37 वीक से पहले पैदा हो उनको हम लोग प्री मैच्योर बोलते वाले हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा कितने जल्दी पैदा हो गया, उनका डेवलपमेंट माँ के कोख में उस लेवल तक ही पहुँचा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 7वां महीना में या 6ठा महीना में डिलीवर हो गया तो आप सोचिए उनका विकास कितना हुआ होगा, बिल्कुल डेवलपमेंट आधा अधूरा में रुक गया होगा, है कि नहीं? तो ऐसे बच्चों को हम डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन बच्चा कितना प्री मैच्योर है, उसका जनरल कंडीशन कैसा है, उसके बेसिस में हम केस बेस केस हर बच्चे का कंडीशन देख के उनको ब्रेस्ट फीड रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 8 महीने के बाद डिलीवर हुआ हो, दैट इज अराउंड से 34 वीक्स हम लोग बोलते हैं, 34 वीक्स तक माँ के कोख में रह के डेवलप होके बाहर आया है, तो इस दौरान क्या होता है कि वज़न भी उसका 1.5 किलो के आसपास या उसके ऊपर पहुँच जाता है, तो एक अच्छा वेट रहता है। और मेन चीज़ जब कोख में डेवलपमेंट होता है तो इस दौरान उनका जो सकिंग रिफ्लेक्स, सक करके दूध को मुंह में लेके स्वॉलो करने का रिफ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ये डेवलप हो जाता है बाय 34 वीक्स। और साथ में दूध माँ के छाती से चूसना, दूध को निगलना और अपना सांस भी लेना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना, ये बाय 34 वीक्स बच्चा सीख जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो अगर 34 वीक्स के बाद में अगर बेबी पैदा होता है तो हम लोग उनको जो है डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई करते वाले हैं, तो उससे जो है बच्चा आराम से चूस के निकाल पाता है। लेकिन अगर 34 वीक से पहले पैदा होता है तो कितना पहले पैदा होता है उस पर डिपेंड करता है, और ट्यूब से पहले माँ का दूध देना शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे बच्चा का विकास होता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसे धीरे धीरे करके कटोरी चम्मच में लेके आते हैं, फिर उसे माँ का छाती में लगाते हैं बेस्ड ऑन हिज डेवलपमेंट।
1: अगर कोई माँ जो है इसी दौरान जो है किसी तरह की दवाइयों पे है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ, कैंसर हो गई या किसी भी तरह की, तो उससे बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ता है?
0: अगर माँ को कोई भी तरह का तकलीफ हो, कोई भी तरह का बीमारी, कुछ भी डाउट हो ना, सबसे पहले हम ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और उनसे सलाह मशवरा लेना है, क्योंकि क्या बीमारी है हमें नहीं मालूम और उसका क्या इलाज है नहीं मालूम, लेकिन हर बीमारी से डर के अपना स्तनपान कराना बंद करना वो भी अच्छा एडवाइस नहीं है, क्योंकि बीपी के लिए मदर का ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हो गया, आपने पूछा, सपोज मदर को ट्यूबरक्लोसिस है और मदर को उसके लिए इलाज चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, माँ का दवाई तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस आके बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना का ये नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे लेकिन माँ से बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस ना मिले, इसके लिए बच्चे को एक स्पेशल मेडिसिन पे स्टार्ट किया जाता है।
1: अच्छा।
0: और फिर बच्चे और माँ को बराबर चेकअप में रखते हैं देखने के लिए कि दोनों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है करके, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करते। एक चीज़ माँ को एडवाइस करते हैं कि क्योंकि सांस से फैलने वाली बीमारी होती है, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करें तो मास्क पहन के ब्रेस्ट फीडिंग करें, बट जरूर ब्रेस्ट फीडिंग करें। अब अगला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा कि अगर माँ को कैंसर है और कैंसर की दवाई में है अगर वो, उसमें तो माँ को दवाई लेना ही लेना है। एट दिस पॉइंट रिस्क वर्सेज बेनिफिट, तो कैंसर की दवा जो है ना माँ के ब्रेस्ट मिल्क से बाहर आता है, इजेक्ट होता है, तो माँ से बच्चे को वो दवा जो है मिलेगा, और कैंसर का दवाई जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर को मारने के लिए बनाया जाता है, तो ना वो जब नॉर्मल बच्चे को मिलेगा तो वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अगर मदर कैंसर के मेडिसिन पे हैं तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना।

0: माँ का दूध नहीं देंगे। अब ये है सिचुएशन जहाँ देयर इज अ मेडिकल इंडिकेशन, बच्चे को अभी हमें आर्टिफिशियल फीड देना होगा क्योंकि बच्चे की माँ का दूध अब उसके लिए सेफ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ में माँ के कंडीशन के बेस में हम लोग को बच्चे को आर्टिफिशियल फीड देना पड़ सकता है।
1: तो ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की ले रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले लेनी है या बाद
0: नहीं,
1: में
0: ऐसा
1: लेनी
0: ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो शेड्यूल दवाई है वो लोग अपना बराबर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनको सेफ रखने के लिए उनको वो दवाई प्रिस्क्राइब किया है। हाँ, लेकिन वो जो भी मेडिसिन वो ले रही है ये लेने जाती है उससे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और बच्चे के डॉक्टर को भी कंसल्ट करें कि कंटिन्यूटी सेफ है, कि माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो सेफली दे सकते वाले दवा माँ को दे सकते हैं कि नहीं, अंटिल शी इज ब्रेस्ट फीडिंग। वन शी इज फिनिश्ड ब्रेस्ट फीडिंग देन दे कैन चेंज और नॉट, ये अगेन केस बेस केस डॉक्टर जो है कंसल्ट करके बताते वाले हैं। बट अगेन दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि दूध नहीं पिलाना है करके।
1: अब यहाँ पे एक और बात उठती है कि महिला अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए तो क्या सभी तरह के व्यायाम वो कर सकती हैं?
0: एक्चुअली में डिपेंड्स अपॉन कि उनका कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या था।
1: अच्छा,
0: अगर मम्मी एक नॉर्मल डिलीवरी से एक तंदुरुस्त बच्चे को पैदा करती है और माँ को भी कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं था तो विद इन फ्यू डेज अगर माँ हेल्दी फील कर रही है तो वो एक्सरसाइज शुरू कर सकती है। और ऐसा नहीं कि अभी अभी आपने डिलीवर किया आप जाके फुल हैवी एक्सरसाइजेस करें।
1: हाँ जी,
0: स्टार्ट एज लाइट एक्सरसाइजेस। अभी अभी आपने डिलीवर किया है, आप भी रिकवर कर रही है
1: जी,
0: तो स्टार्ट लाइक लाइट एक्सरसाइज, एग्जांपल वॉकिंग से शुरू करिए। शुरू में एक 10 मिनट 15 मिनट, फिर डेली 20 मिनट्स ऑफ वॉक कीजिए। यू कैन गो फॉर स्विमिंग, यू कैन गो फॉर योगा।
1: अच्छा,
0: डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी के डिमांड है कि नहीं। वही जगह अगर सपोज मदर सिजेरियन है तो सिजेरियन मदर तो इमीडिएटली कपल ऑफ डेज में नहीं जा सकती है ना, तो सिजेरियन मदर अपने आप को पहले रेस्ट दे, अच्छे से रिकवर हो, उसके बाद में से अराउंड 6 वीक्स और सो 6 हफ्ते के बाद में अगर उनको उनका सारा घाव सब भर गया है, उनके सारे प्रॉब्लम सब सेटल हो गए हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और देन स्टार्ट अगेन एट लाइट एक्सरसाइजेस।
1: अब आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी ये कार्यक्रम सुन रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: तो सबसे पहले तो ये अगस्त 1 तारीख से अगस्त 7 तारीख तक हम लोग विश्व स्तनपान सप्ताह बना रहे हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो इसके दौरान ना मैं हर स्तनपान कराने वाली माताओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो समर्पण और प्यार का भाव आप दिखा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, यही बच्चे जो हैं आगे जाके एक तंदुरुस्त सिटीजन बन के हमें एक हेल्दी फ्यूचर देंगे। तो जो आप कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इसे आप आगे बढ़ाते रहिएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप अपने बच्चे को अपना दूध ही देगी और इस दौरान आप अकेली बिल्कुल नहीं हैं, आपके साथ हम सब खड़े हैं। अभी हमारे अस्पताल ही सारे हॉस्पिटल्स और सारे हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे आशाओं को ट्रेन करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर, और इसके चलते जो है हमारी आशा वर्कर्स जो है फॉर द फर्स्ट 42 डेज 42 दिन तक हर डिलीवरी के बाद में मदर के घर पे जाके लैक्टेशन ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग होता है नहीं होता है असेस करके उनको हेल्प करती है। और अभी ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के दौरान भी हमारे DHS के स्टाफ, हमारे आशा वर्कर्स जो है डेली हर स्तनपान कराने वाले माँ के घर में जाके उनका हेल्प करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो उनको हर कदम हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स जिनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी माँ को अकेला ना छोड़े, उनको आराम दिलाए, उनका ख्याल रखे, उन्हें हमेशा एनकरेज करें कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी है तो ज़रूर माँ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कर सकेगी। और हम लुक फॉरवर्ड ये करते हैं कि कल हम एक ऐसा समाज बना सकेंगे जहाँ हमारी हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए गर्व महसूस कर सके।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो डॉक्टर विनीता शाजू जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अभी आप डॉक्टर विनीता शाजू के साथ ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे, विषय था विश्व स्तनपान सप्ताह, भेंट कर्ता थी रीमा अरोरा। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, आज का दिन हिंदी सिनेमा के उन दो अदाकाराओं के नाम जिन्होंने अपनी बेहतरीन मुस्कान, दमदार अभिनय और अनोखे अंदाज से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर और बेबाक अदाकारा काजोल और जेनेलिया डिसूजा की। 5 अगस्त को जन्म लेने वाली काजोल और जेनेलिया ने हर किरदार को बखूबी निभाया और हिंदी सिनेमा जगत को कई यादगार पल दिए। उनको इस खास दिवस पर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं कि अपनी चुलबुली बातें, मनमोहक मुस्कान और बेबाक अंदाज से लोगों के दिलों में अपनी जीत का मोहर यूं ही लगाते रहें।

0: तो श्रोताओं, आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का सफर यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष

0: से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग

0: सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट

0: 3379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से, और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके

दिखा दैया, लाए उठाए लियो गिर नक पर बंत बजावत देन चलैया, जगे मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक पहेली के साथ। यहाँ वहाँ हर जगह जो आपका पीछा करती है, दूर रहती है फिर भी साथ में है, हर परेशानी के सामने खड़ी हो जाती है, आखिर है किसकी ये परछाई जो आपका पीछा करती है। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुदक्षिणा के साथ।

रौनित सरकार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत फिल्म हेलीकॉप्टर इला।

और हम इस फिल्म से आप सुन रहे थे अदनान सामी और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना मुन्ना दिमान के बोल और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वीआर फैमिली फिल्म से, अनुष्का मनचंदा, आकृति कक्कड़ और सूरज जगन की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक रोमांटिक लड़की का रोल हो या यू मी और हम में मैच्योर लव का कैरेक्टर, काजोल बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक है। 90s में इनका सितारा खूब जगमगाया और अब उनके कमबैक से बॉलीवुड के सारे फैंस बहुत खुश हैं। इनकी रिसेंटली कुछ फिल्म्स का नाम लें तो तानाजी, हेलीकॉप्टर, ईला माँ जैसी फिल्म्स ने आजकल ही नजर आ रही हैं। काजोल के बारे में जानिए कुछ और बातें 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, मां बाप भाई यहां तक कि।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर,
1: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
2: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

सिनेमा के आइकॉनिक कपल से रियल लाइफ कपल आप सुन रहे थे अजय देवगन और काजोल की आवाज। आइए सुनते हैं राजू चाचा फिल्म से

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे राजू चाचा फिल्म से ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सब।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूजा सिंह। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। पंजीकरण शुरू होने से पहले संस्थानों ने कल संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन किया। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। ब्रिक्स देशों की शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से 7 अगस्त तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। द्वीप समूह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के आगामी दौरे के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति 8 और 9 अगस्त को द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति डॉ BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे और महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कंप्यूटर विज्ञान में अतिथि प्रवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को प्रति व्याख्यान ₹1,500 का मानदेय दिया जाएगा। 5 उम्मीदवार 12 अगस्त तक अपने आवेदन कॉलेज के प्राचार्य के पास जमा कर सकते हैं। ये थी अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस।

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूजा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूजा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

धड़क गया अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन भंग और तन पतंग।

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौर और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई, कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।

क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यू मी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यू मी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले, फिल्म खूब चली थी।

2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूजा सिंह। राज्यसभा की स्वीकृति के साथ ही संसद ने जन्म एवं मृत्यु जन्म पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना था। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के लिए लाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि कुल 22 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत आयुष शाखा द्वीप समूह के विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और सामुदायिक स्थानों पर नियमित योग कक्षाओं का संचालन कर रहा है। इन नियमित योग सत्रों का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, शारीरिक फिटनेस में सुधार करना, तनाव कम करना और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये कक्षाएं सभी के लिए खुली हैं और कृषि निदेशालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर लेखाकार और सचिवीय सहायक पदों के चयनित उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची जारी कर दी है। साक्षात्कार 10 अगस्त को सुबह 10 बजे हेडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में लिया जाएगा। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस।

0: बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं, उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ, क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
0: जी जी।
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया।
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट, मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे

0: लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
1: बिल्कुल
0: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल,
1: इंडियन क्लासिक म्यूजिक,
0: कि
1: वो युवाओं के
0: एजुकेशन,
1: बीच।
0: हाँ
1: हाँ
0: एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
1: जी
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक, केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णा मूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात
0: वो
1: है।
0: एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
1: कल्चरल
0: विंटर्स,
1: हब।
0: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
1: त्रिवेणी
0: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
1: बिल्कुल
0: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया, कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई, मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या बात
0: करूं।
1: है। बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्ड कोर कॉरपोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी, उनके घर पे वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हाँ,
0: चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने
0: लिखा
1: इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

श्रोताओं एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई एक ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील्स, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सिटी लाइट्स। इस फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, रश्मि सिंह के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने।

अब सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में फिल्म बाजीगर का ये गीत बोल देव कोहली के हैं, वधुन बनाई है अनु मलिक ने।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए फिल्म भाग मिका भाग का ये गीत, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में बोल प्रसून जोशी के हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अब सुनिए तुम्हारी सुल्लो। इस फिल्म का ये गीत गुरु रंधावा की आवाज में, गीत एवं संगीत रचना गुरु रंधावा के हैं।

अभी आप नीति मोहन का सुन रहे थे, फिल्म का नाम था पद्मावत। और अब आइए सुनते हैं यो-यो हनी सिंह, सिमर कौर और साथियों की आवाज़ों में सोनू के टीटू की स्वीटी, इस फिल्म का ये गीत।

स्पैनिश बागशी के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म हेट स्टोरी 4 का ये गीत हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कर की आवाजों में।

और अब अंत में सुनिए कनिका कपूर और साथियों की आवाजों में दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का ये गीत बोल कुमार के हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1343वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी, वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी।
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
1: क्या बोलेगा,
2: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे।
2: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें, वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा।

0: के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के ऐप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे ऐप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहां के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।

0: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
1: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
2: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
4: आज खेल में बड़ा मजा,
5: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
6: हाँ, गोल हो गया। किसी दिल
0: खुश कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
7: ए, इधर क्या देख रहे हो?
8: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
9: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
7: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
10: चलो चलो चलो,
8: अरे भाई निकलो। लेकिन
9: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
11: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
8: हाँ, ठीक है,
11: कोशिश करते
8: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी ना

0: लेके पार थी।
1: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
2: जी बाबा।
1: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
2: तो क्या इनाम देते हो?
1: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
2: भाई पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला हो।
3: तुम्हें क्या लगता है?
4: महाराज आ रहे
2: हैं। अरे अरे,
3: सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
1: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
5: बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
1: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
2: सही बात है।
1: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
2: बिल्कुल सही कहा,
1: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
2: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
0: बिल्कुल।
2: हाँ।
0: देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
5: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
9: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
10: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी

0: दरी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी

0: जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला, पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं, हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों सुनो, सुनो भाइयों सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ, हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो, साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे।

0: भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
1: कबूतरों ने ऐसा ही किया। सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
2: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
2: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
2: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
2: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
2: चलो, चलो,
3: चलो,
2: चलो,
3: चलो।
1: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
0: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
1: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया। सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1333वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक।

अभी आप किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आइए सुनते हैं आरडी बर्मन और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म पुकार का ये गीत। बोल गुलशन बावरा के हैं, वधुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म नमक हराम का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में बोल आनंद बख्शी के हैं।

अपेश है आनंद बख्शी का लिखा एवं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है रोमांस।

और अब सुनिए फिल्म कभी कभी का ये शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है खय्याम ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:23 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान

0: पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: महफिली कवाली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है।

अभी आप महफिल कवाली कार्यक्रम के तहत चंद कवालियों का लुत्फ उठा रहे थे। आज के कवाल थे साबरी बंधु। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो श्रोताओं, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला समय जिसे हमें भेजा है विम्बलीगंज से डेविड और सोनी ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे नाम का ये गीत, और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जुदाई का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अगर तुम ना होते, इस फिल्म का शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने और इस गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंड ने। अच्छा, अर्चना हीरामन, किशोर धन्नाड़े, हेमंत राव और संजय कुमार और उनके दोस्तों ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सुनना चाहते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Joseph Vijay's government has set a target of becoming $1.5 trillion economy by 2031. Relief and restoration work has intensified across the flood-affected districts of Odisha as water levels continue to recede. We have more from a correspondent.
1: The state government says cooked food, dry rations, safe drinking water, medicines and other essential supplies are being distributed, while efforts are underway to restore roads, electricity and drinking water facilities. However, people in several flood-hit areas have alleged that relief has not yet reached them despite extensive damage. Meanwhile, 5 more sluice gates of the Hirakud Dam have been closed, reducing flood water discharge to just 8 gates. The India Meteorological Department has forecast another spell of widespread rainfall across Odisha till the 10th of this month. An orange warning has been issued for Mayurbhanj, while yellow warning remain in force for 13 districts for today. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya today. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to witness heavy rainfall for the next 2 days. In Korea Masters Badminton Tournament, 3 Indian shuttlers, Isharani Barua, Tanvi Sharma and Sriyanshi Valishetty, have entered the second round of the women's singles of the Korea Open in Asan. Isharani Barua defeated South Korea's Lee So-hee in the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, 3 Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान, कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

0: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.5

0: 7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर

0: 8%।
1: Q4 at 6.8%।
2: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश

0: और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों,

0: अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए लेते हैं और मिलते हैं उन तमाम दोस्तों से जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर, कौन
0: जी? नमस्कार, हमारी बात हो रही है धीरज वीराबरी जी से जो कि हैं गुजरात से।
1: जी धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो रबा
0: जी, जी
1: आप किसो ने?
0: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ और आपसे बात हो रही है।
0: अच्छा, ड्यूटी पर निकल रहे हैं तो आप इस वक्त बिजी हैं। बता दीजिए कि कौन से इस कार्यक्रम में आज वो कौन सा गीत है जो आप अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं?
1: रजिया सुल्ताना का गाना है
0: जी। जी
1: और गाने के बोल है ए दिले नादान
0: जी।
1: और आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ।
0: जी जरूर जरूर।
1: हमारा आकाशवाणी एकता फोनिंग ग्रुप है दीदी, जो भारत भर के श्रोता उसमें जुड़े हैं
0: जी।
1: तो उसमें हमें एक प्रेरणा मिली आकाशवाणी की तरह से, तो हमने एक ग्रुप बनाया
0: जी, जी।
1: और उसमें हमने जो हमारा आकाशवाणी श्री विजयपुरम है उसका सभी सप्ताह भर के फोनिंग कार्यक्रम की अपडेट डालते हैं
0: जी, जी।
1: और हमारे श्रोता जो भी कार्यक्रम सुनते हैं वो भी हम ग्रुप में जताते हैं और कार्यक्रम का डाउनलोड करके भी हमारे श्रोता रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और इसके जरिए हम आकाशवाणी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं
0: जी। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, अपडेट रहते हैं और आप उस पर बात विचार भी रखते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत अच्छा
1: जी।
0: लगा आपकी ये बातें सुनकर। तो आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, हमारे दोस्त है भूपेंद्र वर्मा जी, गौतम राय, तुकाराम यादव, फिर आकाशवाणी के लगभग 100 के ऊपर सदस्य गणे, उनको गाना समाप्त रहेगा और आपको
0: जी शुक्रिया। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Hello, dear friends. Hello, dear friends.
1: जी नमस्ते
0: जी, नमस्कार. हमारी बात हो रही है प्रेम जी से, जो कि है मध्य प्रदेश से.
1: हाँ जी, प्रेम सिंह सिसोदिया, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश.
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं. और अभी खाना खा के बस आपकी आप ही के कॉल का इंतजार कर रहे थे.
0: जी जी, तो कॉल लग गई. जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारा इंतज़ार करते हैं और कॉल लग जाता है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है. और हमें भी नए नए दोस्तों से, जब आप जैसे श्रोताओं से हम बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है. और क्या
1: आपको बताऊँ, खेत में काम कर रहे थे हम
0: जी,
1: और 1 बजे घर पे गए थे, और अभी खाना खा के आपका कॉल का इंतजार करते हुए खेत से वापस आए हैं.
0: जी जी जी और वैसे इन दिनों तो बारिश हो रही होगी, है ना?
1: हाँ, पिछले हफ्ते हुई थी बारिश, अभी यहाँ पर नहीं हो रही है.
0: जी जी जी तो मौसम अभी
1: लगाई हमने.
0: जी जी जी
1: हाँ जी, जो अभी 1 महीने और 10 दिन की हो गई है.
0: जी जी जी जी तो बता दीजिए कि आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहती हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे, आरजू फिल्म का गाना है, साजन साजन तेरी दुल्हन.
0: जी,
1: जी
0: और दोस्तों का नाम नहीं लेंगे?
1: जी बिल्कुल. भगवान सिंह परमार, आशुतोष अभिनय, संगीता जी, भाईकोन मुंडा, अमल विमल, तनुश्री, पहुजा, रमेश केलर, सुनील झा, ये सभी हमारे रेडियो मित्र हैं.
0: तो चलिए प्रेम जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: जी, थैंक यू सो मच.

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है रीता जी से, जो कि हैं श्री विजयपुरम से। कैसी हैं रीता
1: जी।
0: जी आप?
1: मैं तो ठीक हूँ।
0: जी, क्या करती हैं वैसे आप?
1: ऐसे तो अभी फिलहाल जो श्री विजयपुरम में मैं नहीं हूँ, अभी मायाबंदर में हूँ।
0: अच्छा, मायाबंदर में हो।
1: जी, मायाबंदर कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी का काम कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो कितने कितने दिनों से आप वहाँ पे हैं?
1: अभी 1 साल कंप्लीट हो गया और दूसरा साल नेक्स्ट ईयर चल रहा है मेरा।
0: अच्छा, तो कैसा लगता है वहाँ पे आपको पढ़ाना?
1: फिलहाल जो है यहाँ पे मेरा अपना खुद का घर है तो अच्छा ही लगेगा।
0: जी, अच्छा, तो यहाँ पर आप रेंट पे रहती थी?
1: नहीं, वहाँ पे मेरा जो है क्वार्टर है क्योंकि हस्बैंड भी जॉब में है
0: ओके
1: तो
0: ओके,
1: क्वार्टर मिला था मुझे श्री विजयपुरम में।
0: जी, ओके ओके। बताइए रीता जी, आज के इस कार्यक्रम में आप वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहती हैं?
1: आज का जो मेरा खुद बहुत मन पसंद है गाना जो है मैं सुनने मांगती हूँ, तू नहीं हो रंगीला
0: जी
1: कैसा जादू किया,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: उनका नाम जो है कुदरत।
0: जी, और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगी?
1: फिलहाल तो दोस्त तो बहुत है, सारे दोस्त और अब जितने भी सुनने वाले श्रोता सब हैं, साथ में मेरा हस्बैंड जी भी है।
0: जी, तो चलिए रीता जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, मुकेश जी
1: मैडम।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: अच्छा
0: तो श्रोताओं, हमारी बात हो रही है मुकेश जी से, जो कि हैं अमरावती से जी। और इन दिनों क्या कर रहे हैं मुकेश जी?
1: मैडम,
0: जी, बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: मुझे ऐसा
0: जी, दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: ये मेरा भरत दामनी है, संजय बोल गुजरे,
0: जी जी
1: मेरे भाई का नाम है।
0: जी जी तो चलिए मुकेश जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया मैम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अगले श्रोताओं से। हेलो डियर फ्रेंड्स,
2: नमस्कार दीदी।
1: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है साबिर जी से जो कि हैं बिहार से।
2: जी नहर मंटोला जिला मधुबनी बिहार के साबिर परवाना बोल रहे हैं।
1: जी जी, कैसे हैं आप साबिर जी?
2: बहुत बढ़िया दीदी, आप लोग का दुआ है, ठीक है, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
2: बस अभी तो दिल्ली में हैं अभी।
1: अच्छा, तो वहाँ का मौसम कैसा है इस समय?
2: तो हल्का हल्का फुल्का बारिश हुआ है। ठीक
1: है, छुटपुट बारिश हो रही है। जी तो बताइए साबिर जी, आज के इस कार्यक्रम में आप वो कौन सा गीत है जो अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं?
2: बाबुल फिल्म का गाना सुना दीजिए, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का।
1: जी जी, दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
2: हमारे दोस्त हैं वलीउल्लाह अंसारी, किसपाल अकेला, मनोहर लाल गांधी, रजनी सिंह चौहान जी हरदोई की, नाहर मंटोला का जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, कादिर अली, लोकेंद्र वर्मा जी हैं उज्जैन से।
1: जी जी, तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो जी,
0: जी,
1: बोलिए
0: हमारी बात हो रही है सुशीला जी से, जो कि हैं श्री विजयपुरम से।
1: जी।
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: जी, और क्या करती हैं वैसे आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हैं? तो हाउसवाइफ होते हुए बहुत सारे काम रहते हैं ना हाउसवाइफ को तो।
1: घर में बहुत सारे काम रहते हैं।
0: जी, सही काम थे। सुबह से हस्बैंड को भेजो, बच्चों को भेजो, घर के सारे काम है ना।
1: जी
0: जी, और इसके अलावा आप सिलाई कढ़ाई का काम भी करती होंगी, है ना? जी, तो और कुछ शौक है आपके?
1: हाँ, मुझे गाना सुनना शौक है। पुराने
0: किस तरह के गीत सुनते हैं, मतलब पुराने ज़माने के या?
1: जमाने के तो अच्छे ही है।
0: जी, तो बताइए सुशीला जी, आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं तुमसे अच्छा कौन मूवी के टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: जी, और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?

0: हेलो।
1: जी, दोस्तों का नाम लेना चाहेंगी आप?
0: हाँ,
1: जी बताइए।
0: यहाँ पे तो है नहीं, धना है
1: जी
0: और ग्रेसी है। हम
1: जी जी जी
0: बस।
1: तो चलिए सुशीला जी, सबों के साथ सुनते हैं ये
0: हाँ
1: गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हाँ जी, नमस्कार
0: जी,
1: जी।
0: नमस्कार। हमारी बात हो रही है सुरेश जी से, जो कि है
1: हाँ
0: पंजाब
1: जी
0: से।
1: जी जी
0: जी, कैसे हैं आप
1: ठीक हूँ जी। मैं
0: जी? और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: इन दिनों पर खेती का काम करता हूँ जी। तो अभी तो मैं घर में था,
0: जी
1: और
0: जी
1: जब पहली बार आपकी कॉल आई तो मैं खाना खा रहा था।
0: अच्छा, तो हमने आपको
1: कोई
0: डिस्टर्ब कर दिया है ना।
1: नहीं, कोई बात नहीं जी। मैं तो महसूस कर रहा हूँ जी, मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाया, क्योंकि आपने
0: अच्छा।
1: मुझे सामने से फोन आज करके बताया, मेरी बात भी तो होगी आपसे, तो
0: चलिए,
1: फिर
0: कोई बात
1: आपने
0: नहीं, अब
1: दोबारा,
0: तो बात हो रही है
1: हाँ
0: वैसे, है ना
1: बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है जी, दोबारा
0: जी।
1: बात
0: हमें भी
1: आपने
0: बहुत
1: फोन
0: अच्छे
1: किया
0: लग रहे हैं आपसे बातें करते हुए जी।
1: जी।
0: और इन दिनों आपने अपने खेतों में क्या लगाई हुए है?
1: धान लगा रखा है जी।
0: धान लगा कर रखा है जी,
1: हाँ जी,
0: तो बारिश तो हो रही है
1: बारिश 2-3 बारिश हो गई है जी, जो ठीक है, पर्याप्त है जी।
0: जी, और फसल के लिए भी अच्छे हैं ना
1: हाँ बिल्कुल जी।
0: जी। बताइए, आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है जी याराना, और गीत है जी भोले ओ भोले,
0: जी
1: टूट
0: जी
1: उठा दिल टूटा।
0: और किन दोस्तों के साथ ये गीत को आप सुनना चाहते हैं?
1: जी ये मैं, हमारे चंडीगढ़ के दोस्त हैं सतीश कनेजा जी और फाजिलका के हैं ओम बगड़िया जी, इन दोनों के साथ सुनूंगा जी।
0: तो चलिए सुरेश जी, सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्कार जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो ड्राइवर
0: जी,
1: मैम,
0: हमारी
1: नमस्ते
0: बात हो रही है योगेश जी से, जो कि हैं इंदौर से। कैसे हैं
1: मैडम।
0: आप
1: बढ़िया है मैडम।
0: और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: अभी एडिजल इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, वायरिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का
0: तो
1: काम
0: वहाँ
1: करते
0: पर
1: हैं
0: काम
1: मैडम।
0: करते हैं जी।
1: जी मैडम,
0: योगेश जी, बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर का गाना है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, आई वॉन्ट
0: जी।
1: टू।

0: ये है योगेश जी से, जो कि हैं इंदौर से।
1: जी
0: कैसे हैं
1: मैडम,
0: आप
1: बढ़िया है मैडम।
0: और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: अभी एडिल इलेक्ट्रॉनिक्स पे है मैडम, वायरिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का
0: तो
1: काम
0: वहाँ
1: करते
0: पर
1: हैं
0: काम
1: मैडम।
0: करते हैं जी।
1: जी मैडम,
0: योगेश जी, बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर का गाना है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, और
0: जी,
1: दूसरी जी
0: और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: मैडम, जितेंद्र उपाध्याय है, योगेश पाटिल है, भूषण पाटिल है, रामचंद्र प्रजापति है, आयुष है, अनक राम है, हम सभी लोग ग्रुप है, हम लोग सभी
0: जी जी
1: देखते हैं
0: जी
1: मैडम, सुनते हैं मैडम।
0: तो ये योगेश जी समय की पाबंदी है, हम आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, तो चलिए सुनवा रहे हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में। और आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ सुनीता। श्रोताओं, हर सफ़र एक नई कहानी लिखता है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। रास्तों ने हर कदम पर इम्तिहान लिया, मगर इसी सफ़र ने हमें जीने का हुनर दिया।

श्रोताओं, कुछ सफ़र पैरों से नहीं, दिल से तय किए जाते हैं। सफ़र की धूल भी अनमोल लगती है, हर राह एक नई उम्मीद जगाती है, यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है।

श्रोताओं, सफ़र लंबा हो तो थकान मिलती है, लेकिन उसी सफ़र में अनुभव भी मिलता है। सफ़र कभी आसान नहीं होता, हर किसी का एक जैसा मुकाम नहीं होता, चलने वालों का हौसला कभी कम नहीं होता।

श्रोताओं, हर मोड़ पर कुछ खोया, हर मोड़ पर कुछ पाया, यही तो सफ़र का असली मतलब है। हर सफ़र एक नई उम्मीद जगा जाता है, जो चलता रहता है वही मंजिल पा जाता है।

श्रोताओं, मंजिल की चाहत अपनी जगह है, मगर सफ़र की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। सफ़र में जो साथ चल पड़े वही अपने बने, जो बीच राह छोड़ गए वो किससे बने, और जो अंत तक रहे वही रिश्ते बने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम की 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती।
3: डायरेक्टरेट ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स एंड इंटरिंग एम हेल्प डेस्क ने सेटअप लगे होते ये ताकर एलिजिबल एसटी स्टूडेंट्स ने ये तरह ने अवेल गम बेनिफिशियल असिस्टेंट लमकते इंगम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है गम कॉमन ऑफ इंडिया इंट्री लमकते इंगम डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड मिन कहते लोन ही हो ये दहंगी तरह तरह मिना महावत करे चूंग लमक होने कुन बनम ही।

क्वेश्चन विटामिन हे एक मिनरल्स इंट्रे नुप्त उरेन नमासी पानायाल आला हमें कुन्नी लेक्तुकु किन यो नि सलीत ताफुल चुंगेत नो कंपलसरी नके तो गम आते गम यंगनी नेगा नेगा कुनते नि गम आते न आउ इन तंग मिने एंटीबॉडीज हे एक इम्यून सेल्स न लमक नुप तरोक नरे तरोक हरे इन्फेक्शन तसा डायरिया न्यूमोनिया in wa el nang he kin so lan cha in tri hing ra kame ter develop ngam prin he eye development in tri ramu la emotional bonding ngam yang ni tangam kun ran in tri ngam inpo tangam ate ramu la hanang en lon cha ta ha ra nangam kun ni the benefit to pan ngam yang ni in tri yen coloren ha po tangam kun re ta sa o no trip kin yo nahavantare normal size ngam uterus hakun kun ngare bleeding unoided kin yo kun la risk intre ngam breast cancer ovarian cancer hek tangam type 2 diabetes ho ileren ngam ten nahapo el ngam tehing kan ra unoided delivery ure telngat ta full chungnge tanang ngam ahte teke tu nindruk ngam ten उनके कु तथाहेंग उन रेहन नमक हेक नुप ताहेंग इन रे कनांग लोन ये नटके ता एडवाइस अब डॉक्टर अब तंग रोतेर ngam यंग नी नहापो ngam कून रे नाती वाना या लाला हमें ngam नी हेल्दी में इन रे उन अरे ता तफुल चुंगे ता मिहोय में ने न्याकु ता नुप ता मिहोय ने न्याकु ओ हो रे कु हो इरुहेन परी ngam यंग नी नहापो तेल ने ता नेट अंसाम ये हे अंगों ने ट्राई इन Finelehi ing laharap.

Ngajin tahi hangam tin ke ngamana tin ke tahi neti keknya Florence Francis. Hoye ngetul nga haang en ngacindang muhik in huric hangro ngit teka saate ita fan kan ro telah harap ngayin. श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूँ आपका आरजे चेतन। शरीर के किसी एक या अनेक अंगों का जलना एक प्रकार की दुर्घटना है, जो आग, विद्युत, रसायन, प्रकाश, विकिरण या घर्षण आदि से हो सकती है। बहुत ठंडी चीजें को संपर्क में आने से भी शरीर जल सकता है, जिसे शीत जलन, कोल्ड बर्न कहते हैं। आग, तेल या अन्य किसी अन्य तरल पदार्थ से त्वचा के जलने पर असहनीय दर्द होता है। जलने के कई कारण, जैसे तेज धूप, आग से जलना, भाप या कोई गर्म तरल पदार्थ, बिजली या रासायनिक पदार्थ आदि हो सकते हैं। जलना आम घरेलू चोटों में से एक है। जलने से त्वचा को गंभीर क्षति होती है, जो एक प्रभावित त्वचा की कोशिकाओं का मरने का कारण बनती है। गर्म और ठंड दो कारणों से त्वचा जलती है। बहुत ठंड के कारण जैसे त्वचा जलती है, उसी तरह तेज धूप, आग से जलना, भाप या कोई गर्म तरल पदार्थ, बिजली या रासायनिक पदार्थ आदि हो सकती है। जलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्म तेल, गर्म पानी, कोई रसायन, गर्म बर्नर पकड़ने से या दिवाली के फटाके के बारूद से भी व्यक्ति जल सकता है। इसके अलावा खाना पकाते समय महिलाएं अक्सर जल जाती है, जिसमें गर्म दूध या तेल से जलना मुख्य होता है। वहीं बच्चे अक्सर खेल कूद या शैतानी करते समय आग या अन्य किसी गर्म चीज़ की चपेट में आ जाते हैं। मामूली रूप से जलने के घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से जलने पर संक्रमण को रोकना और घावों को भरने के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक्सरे से निकलने वाले विकिरण या कैंसर के इलाज में उपयोग आने वाले विकिरण थेरेपी सूर्य की किरणों एवं पराबैंगनी किरणों, रसायन जैसे कि एसिड, पेट्रोल या रंग को पतला करने वाला पदार्थ। त्वचा का जलना हल्के से लेकर बहुत ज्यादा तक हो सकता है। जब बहुत ही हल्का हो तो उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब तक जलने का असर उत्को या टिश्यू पर न हो। सेकेंड और थर्ड डिग्री के बर्न में अस्पताल ले जाना जरूरी है। इसमें सिर्फ त्वचा की सबसे ऊपरी परत प्रभावित होता है, घाव में दर्द होता है और सूजन और लालपन आ जाता है। अगर घाव 3 इंच से बड़ा होता है, ऐसा लगे कि घाव त्वचा की अंदरूनी परत तक गई है, आंख, मुंह, नाक या गुप्तांग के पास हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाए। सामान्य घाव को भरने में उसे 6 दिन लगते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न, ये बाहरी परत एपिडर्मिस और अंदरूनी परत डर्मिस दोनों को प्रभावित करता है।

इससे दर्द, लालपन, सूजन और यदि घाव जोड़ों पर हुआ है तो उस हिस्से को हिलाना ढुलाने से तकलीफ होगी, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। थर्ड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा की तीन परत प्रभावित हो जाते हैं, इससे त्वचा सफ़ेद या काली हो जाती है और सुन्न हो जाती है। जले हुए स्थान को हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और तंत्रिकाओं के सिरे नष्ट हो जाते हैं। तंत्रिकाओं के नष्ट होने से दर्द नहीं होता, कोई फोफले या सूजन नहीं होती, ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है, अत्यधिक डिहाइड्रेशन हो जाता है, लक्षण समय बीतने के साथ गंभीर होता है। आमतौर पर जलने से बचने के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है। चूल्हे पर खाना बनता न छोड़े, खाना बनाते समय मजबूत दस्तानों का प्रयोग करें जिससे आपके हाथ और क्लाई कवर रह सके। गर्म तरल पदार्थों को बच्चों और पालतू जानवर से दूर रखें। खाना बनाते समय कभी भी ढीले कपड़े न पहने, ऐसे कपड़े में आग आसानी से लग सकती है। जल्दी जल जाने वाले पदार्थों को भट्टी एवं हीटर से दूर रखें। माचिस और लाइटर बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किचन में सिंथेटिक कपड़े न पहने। वाटर हीटर का तापमान 120 डिग्री या उससे कम सेट करें। खाना बनाकर गैस का नॉब बंद कर दे। बच्चों को किचन में अकेला न छोड़े। गर्म खाना और तरल पदार्थ को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। जलने पर जीवन शैली और आहार में कैसे बदलाव करने चाहिए। कभी लापरवाही तो कभी अनजाने में शरीर का कोई हिस्सा जल जाए तो जलने पर सबसे पहले उस पर ठंडा पानी डालिए। जले हुए मरीज को एक साथ पानी मत दीजिए बल्कि ORS का घोल पिलाएं, क्योंकि जलने के बाद आदमी की आंत काम करना बंद कर देती है और पानी सांस नली में फंस सकती है जो कि जानलेवा हो सकता है। जले हुए हिस्से पर मरहम या मलाई बिल्कुल ही मत लगाएं, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। कोशिश ये कीजिए कि जलने वाले हिस्से पर फफोले ना पड़े, क्योंकि फफोले पड़ने से संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा होता है। मिर्ची मसालेदार भोजन का सेवन न करें। अत्यधिक गर्म और तेल खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। गंभीर रूप से जलने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी जला हुआ कपड़ा या दूसरी चीज़ उससे चिपक गई हो तो उसे न निकालें। गंभीर रूप से जले घाव पर कोई मरहम, क्रीम, तेल या मक्खन न लगाएं। अगर व्यक्ति गंभीर रूप से जला है तो उसे कुछ भी न खिलाएं। गंभीर रूप से जले हुए अंग या शरीर को पानी में न डुबाएं। जले हुए व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया न रखें। अगर जलने से श्वास नली प्रभावित हुई होगी तो इससे सांस मार्ग बंद हो सकता है। अगर कपड़े जलकर चिपक चुके हो तो उन्हें घाव से खींचकर न निकालें। फर्स्ट डिग्री बर्न में जली हुई त्वचा को जल्दी से ठंडे पानी में डुबा लें। इसे कम से कम 15 मिनट पानी में डुबाकर रखें ताकि चमड़ी से गर्मी निकल जाए और सूजन न हो। संक्रमण से बचने के लिए जली हुई त्वचा पर एलोवेरा जेल या एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। घाव के ऊपर ढीली पट्टी या न चिपकने वाली पट्टी बांध लें ताकि यह हवा से बचे और दर्द कम हो। सेकेंड डिग्री बर्न में घाव गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। थर्ड डिग्री बर्न में अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। रोगी के शरीर की शिराओं से तरल पदार्थ की आपूर्ति की जाती है। कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है। पूरी देखभाल की आवश्यकता होती है। रोगी अवसाद या डिप्रेशन में जा सकता है। अगर जलना हल्का है तो उसे घरेलू नुस्खों से इलाज किया जा सकता है और सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के लिए तुरंत अस्पताल ले जाए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मैं चेतन आपसे मिलूंगा, तब तक आप मुझे आज्ञा दे। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है 4:40। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के तहत श्रीमती मंजीत कौर से की गई बातचीत का विषय रहेगा कृषि कार्यों से आत्मनिर्भरता। दर्द भरे नगमे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का वक्त रहेगा 7:20। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा गीत भरी कहानी। रात 8 बजे संसद समीक्षा आप सुन पाएंगे जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कल प्रातः एग्री टिप्स कार्यक्रम में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा पपीते की खेती। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा धुआं शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर आप सुनेंगे कुछ वतन के गीत। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्री भानुप्रताप यादव से ली गई भेंटवार्ता सुनाई जाएगी पर्यावरण संबंधी वैश्विक समस्याएं। तत्पश्चात आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे। 7:15 पर कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में 8:30 पर कलाकार होंगे मुकेश रूप कुमार व सोनाली राठौड़। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा 9:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में गायन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस का वक्त रहेगा 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT आप सुनेंगे कल दिन के 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम का प्रसारण होगा 12:00। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:10 पर कलाकार होंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। 1:30 पर सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्म।

पैगाम 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर अपनी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे 4:40 पर। 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम का समय होगा 5:30। कल शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम के तहत डॉक्टर प्रकाश आनंद बाला से की गई बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में पौष्टिक आहार की अहमियत। 6:30 पर आप सुन पाएंगे मोहम्मद सलीम राही के निर्देशन में कुमारी रश्मि शर्मा का लिखा नाटक एक किरण रोशनी की। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा युवा संसार। रात 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर कंट्री वाइड। 9:45 पर इनसाइट। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे आज के और कल के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम में पहले सुनिए सोहनी माहिवाल फिल्म का गीत आशा भोसले व अनवर के आवाजों में। इस गीत के संगीत निर्देशक है अनु मलिक और बोल है आनंद बख्शी के।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए आरडी बर्मन व साथियों की आवाजों में। जमाने को दिखाना है फिल्म के लिए। इस गीत के संगीत निर्देशक हैं आरडी बर्मन और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी की।

लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: नमस्कार। कृषि जगत के आज के इस अंक में मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। किसान साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा शुभ विचार से करते हैं। हमारा आज का विचार है, स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। इस सुविचार के बाद किसान साथियों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाइयों, अब आइए कार्यक्रम में आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है? किसान भाइयों, प्रश्न एक बार फिर दोहराते हैं, धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है? साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहे और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। कार्यक्रम के अंत में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का
2: पुतला बोल रहे।
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चाकम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: चलिए किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने इस अंक में बात करेंगे अदरक की जैविक खेती के बारे में। आप अधिकतर किसान साथी अदरक की खेती करते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक सलाह से अगर हम कृषि कार्य करें तो अधिक लाभ भी हो सकते हैं। आइए अदरक की जैविक खेती कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर वी दामोदरन के साथ की गई बातचीत के माध्यम।
4: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे अदरक की जैविक कृषि के बारे में, और हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर वी दामोदरन। डॉक्टर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अदरक का जहां तक सवाल है तो हमारे द्वीपों में बहुत सारे किसान भाई करते हैं, और मेरे ख्याल सभी मौसम भी है, तो यहां की जो जलवायु है, यहां की जो मिट्टी है, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है?
5: जी हाँ, ऐसा देखा जाएगा तो हमारा द्वीप में नारियल और सुपारी का बागान बहुत सारा मात्रा में किया जाता है, और अदरक जो इंटरक्रॉप का माध्यम में कल्टीवेशन करने के लिए नारियल या बगीचा के लिए एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद फसल है, जो किसान भाई करते भी है, इससे बहुत फायदा भी है। और इस द्वीपों में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यानी जैविक कृषि करने के लिए अदरक एक बहुत ही लाभदायक फसल है।
4: अच्छा, तो आपने कहा कि नारियल और सुपारी के बगीचे में इसे आसानी से किया जा सकता है। नारियल और सुपारी के बगीचे अक्सर थोड़ा सा ढलान वाली जगह पर होती है, तो अदरक की बुवाई वगैरह जो करते हैं उस समय ध्यान रखना होगा, अन्यथा मिट्टी कटने का डर रहेगा?
5: जी हाँ, इसके लिए किसान भाई एक्सट्रीम स्लोपी लैंड को अवॉइड करना चाहिए,
4: जहाँ बहुत ज्यादा
5: स्लोप है उसको अवॉइड करना है। इनकेस अगर उसमें भी कल्टीवेशन करता है तो कंटूर मेथडिंग में जो टेरेस बनाना है वो बना के अदरक उगा सकते हैं। मॉडरेट स्लोप में अदरक बहुत अच्छा तरह हो सकता है, इवन जो जगह स्लोप बहुत कम है उस जगह एकदम बढ़िया होता है अदरक के लिए।
4: अच्छा।
5: तो किसान भाई जब जमीन तैयारी करेगा इस स्लोप का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा।
4: और मेरे ख्याल से जो निचली जमीन है वहां पर नहीं करते हैं किसान?
5: हाँ, जिस जमीन में अगर पानी रुकने का प्रॉब्लम होता है, वाटर स्टैग्नेशन, वो जगह को अवॉइड करना चाहिए। वाटर स्टैग्नेशन होगा तो

0: अदरक में एक बीमारी होता है सॉफ्ट रॉट, उसका कतरा पड़ जाता है। इसीलिए किसान भाई जमीन सेलेक्ट करने का टाइम प्रॉपर ध्यान में रख के उसको सेलेक्ट करना,
1: यानी ऐसे जगह ना हो जहां पर पानी रुकता
0: पानी
1: हो, और
0: रुकता
1: आपने
0: हो।
1: जैसा कहा कि ढाल हो तो ठीक
0: हाँ,
1: रहेगा, बहुत ज्यादा ढाल ना हो
0: बहुत
1: तो
0: ज्यादा नहीं होना।
1: अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे इन द्वीपों में अगर अदरक की जैविक कृषि करनी है तो कुछ ऐसे वेराइटीज होंगी जिसको कि किसान भाइयों को सेलेक्ट करना होगा ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके।
0: हाँ, इस द्वीपों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने बहुत वैरायटीज को एवाल्युएट किया है। इसमें हम लोग पाया गया है कि जोरात करके एक वैरायटी है जो नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही फायदावर है। इसके अलावा मारन और नदिया दो वैरायटी है, ये भी उचित है इस द्वीपों के लिए।
1: तो ये जो वैरायटीज हैं इनका सिलेक्शन करने के बाद जो बुआई होती है, जो प्लांटिंग होती है, तो उसके लिए पहले से जो उसका जो कंद होता है अदरक का जो, तो उसको किस तरह से तैयार करें, किस तरह से प्लांट करें, क्या सलाह देंगे आप?
0: देखिए, किसान भाई अगर अदरक खेती जैविक रूप से करना चाहता है तो प्लांटिंग मटेरियल जब खरीदेंगे इससे ही सावधानी रखना चाहिए कि जो प्लांटिंग मटेरियल किसान भाई इस्तेमाल करेंगे अपना खेत में गाड़ने के लिए, उसको उस किसान से लेना है जो ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेट किया है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अपना लोकल वेराइटी भी कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद विशेष रूप से किसान भाई को ये ध्यान देना है, प्लांटिंग टाइम जो टाइम गाड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिले हो जाता है तो यील्ड घटेगा, तो प्रॉपर टाइमिंग में प्लांटिंग करना है। इसके लिए किसान भाई कम से कम अदरक सीड मटेरियल लेके आके अपना घर में स्टोर करके रखे हैं तो तुरंत ही जमीन तैयारी कर देना चाहिए। जमीन में जो खुदाई जो मिट्टी का काम होता है वो होने का बाद किसान भाई दो तरीका से गाड़ सकते हैं। अगर फ्लैट लैंड है जो जगह पानी नहीं रुकता है वो जगह में बेड बना के गाड़ सकते हैं। अगर स्लोप लैंड है तो रिजेस एंड फरो मेथड में गाड़ सकते हैं। तो बेड अगर बनाएंगे किसान भाई तो बेड का चौड़ाई 1 मीटर रखना चाहिए
1: जी
0: और लेंथ आके 3 मीटर, या जो हिसाब से उनको काम कर सकते हैं वो हिसाब से बेड बना सकते हैं। बेड हमेशा जो जमीन फ्लैट लैंड है उसमें ऊंचा बेड बनाना चाहिए, यानी कि एक 15 सेंटीमीटर जमीन से
1: ऊंचा
0: ऊपर
1: होना
0: हो,
1: चाहिए।
0: ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार का अगर बेड बनाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 2,000 बेड बना सकते हैं। तो जब गाड़ेंगे अदरक को जो सीड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम बिट, यानी कि एक एक राइजोम का एक मात्रा होता है गाड़ने के
1: एक एक
0: लिए।
1: टुकड़ा जो होता
0: टुकड़ा का वजन 15 से 20 ग्राम होना चाहिए, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार का टुकड़ा बना के रखना। तो अगर प्रति हेक्टेयर गाड़ना है तो कम से कम 1,500 से 2,000 किलो का सीड मटेरियल लगेगा किसान भाई को। तो अगर जैविक मेथड में गाड़ेंगे किसान भाई क्या करना है, ये राइजोम बिट को जब गाड़ेंगे तो दूरी भी देखना चाहिए, किसमें उसको किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। एक रो से दूसरा रो का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एक प्लांट से प्लांट, एक
1: पौधे से
0: पौधे से
1: पौधे।
0: पौधे कम से कम 15 सेंटीमीटर का दूरी रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इस प्रकार का वो प्लांटिंग करेंगे। जब प्लांटिंग करेंगे तो एक एक जगह में एक छोटा सा गड्ढा खुरपी से बनाना चाहिए। उस गड्ढे में गोबर खाद और ट्राइकोडर्मा मिक्स करके वो अप्लाई करना चाहिए। प्रति पिट के लिए 20 ग्राम अप्लाई करने से बस से
1: 20 ग्राम।
0: 20 ग्राम। तो फिर एक टुकड़ा अदरक को उसमें रख के प्लांटिंग कर देना चाहिए। जब प्लांटिंग हो जाएगा और एक काम किसान भाई ध्यान से करना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं मल्चिंग, यानी कि कचड़ा वगैरह डाक देना है। अगर धूप काल में गाड़ेंगे किसान भाई, इसका प्लांटिंग टाइम होता है मार्च अप्रैल, तो प्लांटिंग टाइम डिले नहीं करना चाहिए। प्लांटिंग में सही टाइम में करके ये मल्चिंग मेन ऑपरेशन है। जितना मल्चिंग करेंगे उतना पैदावार अच्छा होगा।
1: अच्छा, अगर जो किसान भाई अगर कोई लेट है तो अभी भी कर सकते हैं अगर
0: कर
1: चाहें तो,
0: सकते हैं, यील्ड में थोड़ा
1: थोड़ा सा
0: फर्क
1: फर्क
0: आएगा।
1: आएगा।
0: हाँ
1: अच्छा ठीक, तो ये मल्चिंग करने के बाद ऐसे
0: हाँ
1: छोड़ देना चाहिए?
0: या मल्चिंग करने का बाद छोड़ देंगे तो 1 महीना जब बारिश होगा अदरक निकलेगा, उसके बाद किसान भाई उसमें ध्यान देते रहना चाहिए। खरपतवार, खरपतवार को समय पर निकालना चाहिए। ये पहला खरपतवार जब निकालेंगे 40 दिन का अंतर में जब फसल निकलने लगेगा, फर्स्ट 40 डेज में एक बार खरपतवार निकालना चाहिए। फिर उसके बाद गोबर खाद है तो वो थोड़ा डाल के मिट्टी चढ़ाना, जिसे हम अर्थिंग अप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ा के फिर एक बार मल्चिंग करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर मल्चिंग करेगा किसान भाई, प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन का मल्च मटेरियल यूज करना है। इसमें आप पत्ती जो भी हरा पत्ती भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बार जब मल्चिंग करेंगे 45 डेज में, उस टाइम 5 या 6 टन का प्रति हेक्टेयर का हिसाब से मल्च मटेरियल यूज करें। उसके बाद सेकेंड और एक मल्चिंग देना पड़ेगा, ये करीब 3 महीने का बाद पौधा

0: निकलने का 3 महीने का बाद एक बार फिर खरपतवार निकालना है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो फिर से दे के मिट्टी चढ़ाइए, मिट्टी चढ़ाने का बाद मल्चिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, तो ये जो मल्चिंग या जो बिछावन बिछाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है?
0: इससे 2 प्रकार का फायदा होता है। एक तो वो क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करता है नेचुरली, फिर ये जो है डीकम्पोज हो जाता है,
1: सड़के उसी में
0: सड़के,
1: मिलता है।
0: और वीड ग्रोथ को सप्रेस करता है। तो ये डीकम्पोज होने से ये न्यूट्रिएंट ऐड करता है सॉइल में।
1: और जैसे आपने कहा जो खरपतवार है वो भी कम निकलते हैं चूंकि इसके ऊपर ये बिछावन रहता है। पहली बार जब मिट्टी चढ़ाएं तो गोबर खाद वगैरह दे दें, उसके बाद भी फिर खाद देने की आवश्यकता होती है इसमें?
0: 90 डेज में एक बार,
1: 90 दिन में
0: अगर
1: एक बार,
0: है
1: और
0: तो देने से अच्छा होता
1: अच्छी
0: है
1: बात
0: फसल।
1: होती है। तो इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ देखा गया है
0: इस
1: आपके?
0: दीपों में देखा जाएगा तो अधिकतर प्रॉब्लम नहीं है। अदरक में स्टेम बोरर होता है, उसका इंसिडेंस का हमेशा जुलाई अक्टूबर में होता है। तो किसान भाई देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि वो स्टेम को बोर करके उसको ये करती है,
1: तना में छेद करता है।
0: छेद करती है। अगर ये अगर नोटिस करता है किसान भाई, तो जैविक कृषि अपनाने से नीम तेल को स्प्रे करने से बस से
1: कंट्रोल
0: इसका
1: हो सकता
0: कंट्रोल
1: है।
0: हो जाएगा।
1: तो इस तरह से जब अदरक की खेती करते हैं किसान भाई, तो कितने दिनों में ये फसल निकालने के लायक हो जाती है? इसका ड्यूरेशन कितना होता है?
0: ड्यूरेशन, अगर अदरक को 2 प्रकार का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वेजिटेबल जिंजर बोलते हैं, इसको अगर आप यूज करना है तो 6 महीना से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जिंजर को ज्यादा दिन आप
1: रख नहीं
0: रख नहीं
1: सकते।
0: सकते हैं। या तो ड्राई जिंजर बनाएंगे, या तो उसको अदरक को फिर गाड़ना, सीड मटेरियल इस्तेमाल करना है तो 8 से 9 महीना का बाद ही हार्वेस्ट करना है।
1: जब पौधे सूखने लग जाए
0: हाँ,
1: उसके
0: सूखने
1: बाद,
0: लगता है। तो ये आपको पोस्ट रेनी सीजन में ही इसका हार्वेस्टिंग आएगा।
1: जब कुल उत्पादन कितना, यहाँ का प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता यहाँ कितना देखा है आप लोगों ने?
0: यहाँ अगर नारियल बागन में अदरक का फसल करते हैं तो एवरेज यील्ड 10 से 15 टन का होता है। यदि किसान भाई बहुत अच्छा मोनोक्रॉपिंग या बहुत अच्छा प्लेस में गाड़ेंगे तो 25 टन तक भी निकाल सकते हैं,
1: मिल सकता
0: मिल
1: है
0: सकते।
1: अदरक में। डॉक्टर साहब, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग या अदरक को निकालने के बाद उनका संरक्षण भी एक बहुत अहम बात होती है, तो वो
0: हाँ,
1: भी थोड़ा संक्षेप में बता दें कि
0: ये चीज़ तो किसान भाई ध्यान देना चाहिए। जब अदरक मार्केट करते हैं, मार्केट करने का बाद उनको अगर सीड मटेरियल में प्रिजर्व करना है तो उसको ध्यान से एक गड्ढा बना के उसमें स्टोर करना चाहिए। या यदि अगर रूम में स्टोर करेंगे तो रूम अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, एरेशन होना चाहिए, उस तरह जगह में यूज करना है। पिट मेथड में अगर किसान भाई स्टोर करेंगे, बड़ा गड्ढा खोद के उसमें गड्ढा का चारों तरफ गोबर खाद से लीप देना, गोबर से।
1: अच्छा,
0: उसके बाद अदरक जब वो पिट में स्टोर करेंगे, देखना चाहिए किसान भाई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक लेयर अदरक डाल के उसके बाद उसके ऊपर सैंड या तो ये कायर डस्ट,
1: मतलब बालू या
0: बालू
1: जो
0: या तो
1: सॉडस्ट जो
0: सार
1: बोलते हैं।
0: डस्ट को डालना चाहिए एक लेयर। इस प्रकार अल्टरनेट लेयर बना के गड्ढे में रख सकते हैं। जब गड्ढा भर जाएगा तो ऊपर देखना चाहिए, कुछ वुडन प्लैंक्स या तो पत्ती वगैरह से ढकना है। विशेष रूप से किसान भाई ये ध्यान देना चाहिए वो गड्ढा में पानी नहीं जाना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: एरेशन फुल होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: यदि अगर किसान भाई इसके अलावा ड्राइड जिंजर में जाना चाहते हैं वो भी बना सकते, उसके लिए अदरक को अच्छा से धोना चाहिए, वॉश करके उसका जो सॉइल वगैरह है उसको
1: मिट्टी वगैरह हटा देना चाहिए।
0: रिमूव करना चाहिए। उसके बाद एक बम्बू या तो शार्प वुडन थिंग्स रख के उसको पीलिंग बोलते हैं, छिलका निकाल के सन ड्राइंग करना, धूप में सुखाना, करीब 1 हफ्ता तक सुखाने से ये ड्राई जिंजर बन जाएगा। ड्राई जिंजर बनाएंगे तो किसान रिकवरी कम होता है, कम से कम 100 किलो अगर फ्रेश जिंजर आप सुखाएंगे तो 25 किलो ड्राई जिंजर मिलेगा। इसको आप बहुत दिन रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि अगर किसान भाई बहुत ध्यान लगाकर वैज्ञानिक तरीके से अदरक की खेती करें, जैविक कृषि करें, तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा
0: मुनाफा
1: मिल
0: भी।
1: सकता है। तो डॉक्टर दामोदर आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी बातें आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अदरक की जैविक खेती। साथियों, अभी आप इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर रहे थे, बता रहे थे डॉक्टर वी दामोदरन। किसान भाइयों, चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान साथियों, नीम हमारे आंगन का वो वैद्य है जो बिना किसी फीस के हमें 100 बीमारियों से बचाता है। इसकी कड़वाहट में ही हमारी सेहत का सबसे मीठा राज छुपा होता है। तो आइए सुनते हैं एक जानकारी, नीम के फायदे।
1: फसल को कीट और रोगों से बचाकर रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं। इन रसायनों के उपयोग से खेत की जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। ऐसे में किसान रसायनों को छोड़कर नीम एवं

0: ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब आपको बता दें कि नीम का प्रयोग कैसे करें। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को जैविक विधि से खेती करनी चाहिए। इस विधि में अगर नीम के पत्ते, नीम की खली और नीम के तेल का प्रयोग करेंगे तो किसान अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचा सकेंगे। इस तरह फसल से काफी शुद्ध अन्न की उपज प्राप्त होगी, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर फसलों पर कीटों का प्रकोप हो गया है तो सबसे पहले नीम के पत्ते को ठंड में सुखाकर रात भर पानी में डुबाकर रखें। इसके बाद उस पानी को पौधों पर छिड़क दें। इस तरह फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि बैंगन के पौधों को तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में बैंगन के पौधों पर नीम के तेल का स्प्रे कर देना चाहिए, इससे कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि अगर किसान 1 हेक्टेयर खेत में रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उनका कम से कम 1,000 रुपये खर्च होता है। इसके साथ ही रासायनिक कीटनाशकों से फसल का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी को भी हानि पहुंचती है, लेकिन फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए नीम बहुत अच्छा उपाय है। गाँव में नीम आसानी से मिल जाता है। अगर किसान नीम से कीटनाशक तैयार करते हैं तो उन पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाएं। नीम का कीटनाशक बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार से है। नीम की पत्ती, खली और इसके तेल की जरूरत होगी। नीम से कीटनाशक बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को एकत्रित कर उन्हें छाया में सुखाएं। पत्तियों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर उन्हें पर्याप्त पानी में रात भर डुबाकर रखें। इसके बाद नीम की पत्ती वाले पानी का छिड़काव पौधों पर करें। इस छिड़काव के बाद फसल पर कीट का प्रभाव नहीं होगा। चलिए अब आपको बता दें कि नीम की खली कैसे बनाएं। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होगी वो इस प्रकार से हैं: 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली या 5 किलोग्राम निबोली की खली। सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर इससे करीब 3 लीटर अक्र निकाल लें। अगर 1 लीटर कीटनाशक है तो आपको करीब 20 लीटर पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद तैयार मिश्रण को आप अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव के बाद 1-2 दिन में ही इसका असर नजर आ जाएगा।
1: साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे नीम के फायदे। किसान साथियों, चलिए सुनते हैं एक और गीत।

अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। जैसे कि किसान साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपसे प्रश्न पूछा था कि धान के खेत में क्या सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है। इसका उत्तर है जी हाँ, धान के खेत में सिंगी और मागुर मछलियों को पाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा।

0: और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: अब किसान साथियों, हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अधूरे रह जाते हैं। दिल में बस यही सवाल रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ यादें वक्त के साथ भी दिल से नहीं जाती, वक्त आगे बढ़ जाता है लेकिन दिल उन लम्हों को वहीं संभाल कर रखता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। दोस्तों, कुछ रिश्ते बनकर भी अधूरे।

जुदाई का दर्द बहुत खामोश होता है दोस्तों। इंसान मुस्कुराता तो है, मगर दिल किसी की कमी महसूस करता रहता है। कुछ दूरियां रिश्ते खत्म नहीं करती, बस यादों को और गहरा करती हैं।

0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, प्यार में रुसवाई भी आती है और जुदाई भी। प्यार में सिर्फ खुशियां ही नहीं, इंतजार भी होता है। कभी मिलन तो कभी बिछड़ने का एहसास भी होता है।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में एक सच्चे साथी की जरूरत हर किसी को होती है, जो हर खुशी में साथ दे और हर मुश्किल में हौसला दे। ऐसा साथ जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसे अपने की कमी महसूस होती है जिसे हम अपने दिल की हर बात बिना झिझक कह सके, जिसके साथ दुख बांटने से मन हल्का हो जाए और खुशियाँ

दोस्तों, कभी-कभी दिल भी कह उठता है कि कोई होता जिसको अपना हम कह लेते, बस एक अपना मिल जाए जिससे दिल की बातें कह सके, जिसके साथ खुशियां बांट सके और दर्द भी भूल जाए, क्योंकि जिंदगी में अपनों का साथ ही सबसे बड़ा सुकून होता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
4: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
5: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
6: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
2: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
7: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
8: यन पॉलिसी यन कयल।
2: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
9: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
10: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया। अब बैंक के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को मिलेगा वैध साक्ष्य का दर्जा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, डिजिटल दुनिया में बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बना रही मजबूत कानूनी और जागरूकता तंत्र। समग्र शिक्षा के तहत हडबे के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार प्रशासन ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागों से किया व्यापक प्रचार का आग्रह।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। यह कानून बैंकिंग व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार हाल में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है, जिनमें हानिकारक सामग्री देखना, डिजिटल उपकरणों जैसे फोन, कंप्यूटर या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जानबूझकर डराने, अपमानित करने, परेशान करने या नीचा दिखाने का ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन सोशल और डिजिटल लत शामिल हैं। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है, जिनमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू किया गया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। डीपीडीपी अधिनियम बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन तैयार करने और आम जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य जागरूकता के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पर परियोजना शुरू कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, मूल्यांकन शिविर और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत आज सीआरसी पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हडबे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया।

या इस शिविर में चिकित्सकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 26 विद्यार्थियों की जांच की, जिनमें से 4 विद्यार्थियों को आगे की जांच के लिए चिन्हित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों को बच्चों की प्रारंभिक पहचान और समग्र शिक्षा के तहत उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गई। पात्र बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री और ब्रेल किट भी वितरित की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के माई वेब्स मंच के माध्यम से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 शुरू किया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने संबंधित विभागों से इस राष्ट्रीय पहल का प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न जिलों के उभरते डिजिटल सामग्री निर्माताओं को अपनी स्थानीय संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक परंपराओं और प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देना है। प्रतिभागी लघु वीडियो, रील, वृत्तचित्र, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल सामग्री तैयार कर माई वेब्स मंच पर अपलोड कर सकते हैं। उद्योग विभाग ने द्वीप समूह के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से एमएसएमई सतत शून्य दोष शून्य पर्यावरणीय प्रभाव प्रमाणन योजना यानी ZED प्रमाणन योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ZED प्रमाणन ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड स्तर पर उपलब्ध है। योजना के तहत पात्र उद्यमों को प्रमाणन के लिए सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए इच्छुक उद्यमी मिडिल पॉइंट स्थित जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा स्थल, तिथि और रिपोर्टिंग समय पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तर फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का आज भातुबस्ती स्कूल मैदान में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने किया। भारतीय सेना की पूर्व 71 इंजीनियर रेजिमेंट की ओर से चिंते लॉन्ग रेंज क्षेत्र में फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास 8 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान आम नागरिकों को अभ्यास क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम परामर्श प्रक्रिया 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी। महाविद्यालय परिसर में होने वाली इस परामर्श प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे तक संबंधित विभाग में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया। अब बैंक के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को मिलेगा वैध साक्ष्य का दर्जा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, डिजिटल दुनिया में बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बना रही मजबूत कानूनी और जागरूकता तंत्र। समग्र शिक्षा के तहत हडबे के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार प्रशासन ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागों से किया व्यापक प्रचार का आग्रह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बम्बुका कल 6 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6 बजे स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की ओर रवाना होगा और उसकी वापसी उसी दिन सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल 6 तारीख को 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर निकलेगा और जलयान कल ही दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। इसकी वापसी दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल 11:30 पर स्वराज द्वीप की ओर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप की ओर रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग कल 6 तारीख को दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप के लिए एमवी रंगत कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान दूसरे दिन 7 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापसी यात्रा करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। पहले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए फिल्म उपकार से, आशा भोसले, मन्ना डे व महेंद्र कपूर के स्वरों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीतकार है प्रेम धवन।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

और आज की कहानी का शीर्षक है एक अधूरी दास्तान। दोस्तों, गुमनाम नगर एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर था, जहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती थी और शामें सुनहरी धूप के साथ ढलती थी। इसी शहर के प्रसिद्ध महाविद्यालय में पढ़ता था शौर्य। वह अपने शांत स्वभाव, सादगी और अच्छे व्यवहार के कारण पूरे कॉलेज का चहेता था। पढ़ाई के साथ साथ उसे क्रिकेट खेलना और खाली समय में कविताएं लिखना बहुत पसंद था। दूसरी ओर सोनी, कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा, वह हर परीक्षा में प्रथम आती और उसकी मुस्कान पूरे परिसर की पहचान बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तेज़ हवा से जब उसकी किताबें ज़मीन पर बिखर गईं, शौर्य ने झुककर किताबें उठाई और पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस एक पल में जैसे समय ठहर गया। उस दिन के बाद हर कविता में वही चेहरा बस गया और उसका दिल अनजाने ही उस मुस्कान का हमसफर बन बैठा।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवानी।

दोस्तों, उस पहली मुलाकात के बाद शौर्य अक्सर किसी न किसी बहाने सोनी से मिलने लगा। कभी लाइब्रेरी में नोट्स मांगता तो कभी कैंटीन में उसके साथ चाय पीते हुए घंटों बातें करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। सोनी को शौर्य की कविताएं बेहद पसंद थी और शौर्य को सोनी की सादगी और समझदारी। हर बीतते दिन के साथ शौर्य के मन में उसके लिए प्यार और गहरा होता गया, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत वह कई महीनों तक नहीं जुटा सका। आखिर एक शाम कॉलेज के बाहर उसने कांपती आवाज में अपने दिल का हाल सुना दिया। उसने कहा कि उसकी हर सुबह, उसका हर सपना और हर कविता अब सिर्फ सोनी के नाम है। उस पल उसे लगा कि जैसे बरसों से दिल में कैद शब्द आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हों, और उसकी सबसे बड़ी चाहत बस उसके दिल में हमेशा के लिए जगह पा ले।

शौर्य की बातें सुनकर सोनी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। वह शौर्य की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अपने भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस में थी। कई दिनों तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शौर्य ने भी उस पर दबाव नहीं डाला और बस उसके निर्णय का इंतज़ार करता रहा। आखिर एक शाम सोनी ने उसे कॉलेज के गेट के बाहर बुलाया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि वह भी शौर्य को खोना नहीं चाहती और उसके साथ अपना भविष्य देखती है। यह सुनते ही शौर्य की आंखों में खुशी छलक उठी। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। वे साथ सपने देखने लगे, साथ हंसते और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया ढूंढने लगे। अब दोनों को लगता था कि उनके दिल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दुनिया में उनसे बढ़कर कोई अपना नहीं है।

दोस्तों, कुछ समय तक सब कुछ बेहद खूबसूरत चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सोनी का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहाँ वह हर छोटी बात शौर्य से साझा करती थी, अब उसके संदेशों का जवाब घंटों बाद आता। फोन कॉल्स कम होने लगे और मुलाकातें लगभग बंद हो गई। शौर्य बार बार वजह जानना चाहता था, लेकिन हर बार उसे केवल व्यस्तता का बहाना सुनने को मिलता। इस अनिश्चितता ने उसके मन को बेचैन कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसकी कविताओं में अब दर्द उतरने लगा था और क्रिकेट का मैदान भी उसे सूना लगने लगा। कुछ ही दिनों बाद सोनी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। जाते जाते वह बहुत कुछ अनकहा छोड़ गई। शौर्य बस दूर तक उसे जाता देखता रहा, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया हो और पीछे किसी की पूरी दुनिया अधूरी छोड़ गया हो।

कई महीनों की बेचैनी के बाद शौर्य ने एक दिन हिम्मत करके सोनी से मिलने का फैसला किया। उसने शांत मन से पूछा कि आखिर उनके रिश्ते में इतनी दूरियां क्यों आ गई। लेकिन सोनी ने कहा कि शौर्य उसे ज़रूरत से ज़्यादा समय देना चाहता था और उसे अपने लिए कुछ जगह चाहिए थी। यह सुनकर शौर्य पूरी तरह टूट गया। उसने कभी अपने प्रेम को बंधन नहीं समझा था, लेकिन उसकी सबसे सच्ची भावना ही उसके खिलाफ खड़ी कर दी गई। उस दिन के बाद सोनी ने उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया। कुछ समय बाद शौर्य को पता चला कि सोनी की शादी किसी और से तय हो गई है। यह खबर उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी सारी कविताएं अधूरी रह गई, सपने बिखर गए और दिल का हर एक कोना दर्द से भर गया। उसने फैसला किया कि अब वह किसी से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि एक अधूरी मोहब्बत ने उसके भीतर ऐसा शोर छोड़ दिया था जो उम्र भर शांत नहीं हो सकता था।

क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह गीतों भरी कहानी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर

38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस की विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अन्बदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंताकायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा

व चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। फिल्म अनोखा की इस गीत को आवाज़ों से सजाया है मुकेश व साथियों ने। इनके अल्फाज इंदी वर्ग की कलम से निकले हैं और संगीति कल्याण जी आनंद जी की है।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए फिल्म लट साहिब से। इस गीत के संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और स्वर हैं मोहम्मद रफी के।

श्रोताओं सुनिए अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा बोल गीता मेरा नाम फिल्म के लिए और गायक कलाकार है लता मंगेशकर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमा तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमा का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE, BTech या MCA या MBA

ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIAA+ एवं MCSA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार।

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट

0: कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR

0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes Bill 11. Lok Sabha clears nation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb are among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the government keeps itself informed of global developments and evolving international regulatory approaches relating to online safety, including measures adopted by different jurisdictions for protection of children in the digital environment. He said the Digital Personal Data Protection Act 2023, DPDP Act, has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. The DPDP Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content.

0: पापा खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको बताइए, अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल, जो कि फ्रॉड करना चाहता है, उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह

0: बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सकें। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं, बहुत जल्दी एक्ट करना। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरने के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए, अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से, जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहाँ जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बाकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से एक कम से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करे।

0: बैंक कहता है नहीं, इंटरमीडियरी करेगी, इंटरमीडियरी कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सब की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है। तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी अश्विनी जी, आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए, क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था, वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, 1 घंटे के डिले पेमेंट जो है, का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप 1 घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो 1 घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है, तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है, तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या है होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है, उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
0: देखिए, आपने जो बात कही पहले, उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है, तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है, तो अनटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है, तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है, जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को, या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है, आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था, आनंद, आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई, जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया, या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया, या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का, या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में,

0: वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक, तो इसमें स्पीड स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी,
1: जी
0: के रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूँ 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5% 10% रिकवरी हो पाती है, और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे, 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा, अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसीज अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, हाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यावहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। BC मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या

0: दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है? या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में, हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथोराइज सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया। अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता। उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी

0: है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए, और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रम में पहले सुनिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अलका याग्निक व सोनू निगम की आवाजों में, संगीति संदेश संधेलिया की, बोल अनिल पांडे के।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए उदित नारायण के स्वर में हमराज फिल्म के लिए। इस गीत को धुनों में पिरोया है हिमेश रेशमिया ने, बोल है सुधाकर शर्मा के।

आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा और नदीम श्रवण की बनाई धुन, कुमार सानू व अलका याग्निक की आवाजों में बरसात फिल्म का गीत।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए कहो ना प्यार फिल्म से। इस गीत को शब्दों में पिरोया है सावन कुमार ने और स्वरों से सजाया है लकी अली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, दिल है तुम्हारा फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति व सोनू निगम की आवाजों में ये गीत, जिसकी संगीत निर्देशक है नदीम श्रवण और गीतकार है समीर।

इस गाने के साथ ही समाप्त होता है हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: Hello, this is mic number 1. Time here is 4 hours 50 minutes seconds 9 10 11 12 13 14 15. Hello. This is mic number 1. Time here is 4 hours 50 minutes seconds 24 25 26.
1: ऐसा क्यों होता है कि रोशनी अपने साथ साए लाती है? मुस्कुराहटों के पीछे आंसू होते हैं,

This is mic number 1. Time here is 4 hours 55 minutes seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

माइक नंबर टू, टाइम हेयर इज 4 आवर्स 55 मिनट सेकेंड्स 35 36 37 38 39

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 15वीं तिथि तदनुसार 6 अगस्त सन 2026 इस समय सवेरे के 5:28:35 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।